0: महला पहला जे गुरसूतक मनिया सब ते सूतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जे ते दाने हनके जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो हजत हरिया सब कोए सूत क्यों कर रखिए सूत पवर सोए नानक सूत के मन उतरे ज्ञान उतारे तोए।
1: महला पहला मन का सूत को लोभ है जेहवा सूत को कूड़ अखी सूत को वेखना पर तिरया पर धन रूप कन्नी सूत कन पे लाइत बारी खाहे ना।

0: तन मन फिका होए फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगे सटिए मुथुका फिके पाए फिका मूर्ख किए पाना ले सुजा।
1: अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नामे हैं उतरे नहीं मैल जिन पट अंदर।

एक ओंकार सत्यनाम कर्ता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चहन यर भरन जात यर पात नहन जेह रूप रंग यर रेख पेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनपाओ प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहन गणजय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत तय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत काल समुद्र पै रूप प्रकट हर नाम उदारन बस है संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारन निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जानिया पयो तेह समसर सोई तरन गगन नव खंड मह ज्योत स्वरूपी रहो पर पन मथरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन परतख हर चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद ध्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे जे को अपनी शोभा लोरै साध संग इह होमे शोरै जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरनी परै जिस जन को प्रभ दर्श पियासा नानक ताके बल बल जसा दर्शन प्यासी दिन सरात चितवाओ अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत लिख कत न छूटिया खिन खिन भूलन हार बख्सन हार बख्सल नानक पार उतार सुकह टल गुर सेविया एह निस सहज सोभाए
दर्शन परसै गुरु का

साधना माया साध संग सब दुख मिटाया राव रहिया प्रभ सब मह आपे हर जप रसना दुख ना व्यापे रहा

कोट जतना संतोख ना पाया मन तृप्तना हर गुण गाया देहो भगत प्रभु अंतर जामी नानक की बेनंती स्वामी देहो भगत प्रभु अंतर जामी नानक की बेनंती स्वामी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बिलावल महला पंजवा मात पिता सुत साथ ना माया साध संग सब दुख मिटाया

0: गए मसक्कत का नानक ते मुख जले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: ਧਿਆਨ

सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। बिनत करूं अरदास सुनो, जे ठाकुर भावे देहो दर्श मन चाहे।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार सब त्यावह सब त्यावह तुध जी हर सच्चे सिरजनहार सब जी तुम्हारे जी तू जियां का दातार हर त्यावहु संत हो जी सब दुख विसारण हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सबै करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब वैरन को आज संघरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उवरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तुझ जो करियो रक्षा। राख लिहो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतर। काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतार, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर यस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आ करख करत हो कब हों, तुम मैं मिलत देह धर सब हों। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्वकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंब। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा।

स्वैयन पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहें हम एक न जाने ओ श्री असपान कृ

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां।

सोत अपराध करत है जेते जननी चीतना राखस तेते रामैया हों बारक तेरा काहे न खंडस अवगण मेरा जे अत करोप करे करताया ता पी चीतना राख समाया चिंत

कपटं तान कपटं कुल गर्वतः संचांत विखिया शलं शिदरं नानक बिन हर संग ना चालते पे खंदड़ो की पुल तुम्मा दिसम सोहना अड ना लहंदड़ो मोल

का विचार। मूर्ख पंडित मत हुज्जत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार, जति सदावे जुगत ना जाने छड़ बे करबार। सब को पूरा पे होवे काट ना कोई आखे, पत परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला। वधी सवजक नानका सच्चा वेखे सोए, सबनी शाला मारियां करता करे सो होए। अगे जात ना जोर है अगे जियो नवें, जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के। पौड़ी तुर कर्म जिना कुतुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया।

योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं शूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ हो नानक ता का दास है, सोई निरंजन देव महला दूजा एक कृष्णं, सर्व देवा देव देवा तय आत्मा आत्मा वासुदेव से जे को जाने पे ओ नानक ता का दास है, सोई निरंजन देव महला पहला।

यह मीठी जी माहे हेताने बाल बांति छाप कर तो पावा पेखत सोनत प्राव अंतर जामी शील धर्म दया सोच नासत आयो शरण जी के दानी कारण कारण सम्राट।

रंच करेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे स्वार दरी खान पान सौदे सुख पुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता भाई अर बंदब बूझन की सब सूझ परी वर्धमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक करी कर गए रहो कृपाल कृपा निध नानक काट ब्रह्म परी रे मन मूस बिला मैं गर्भत करतब करत महामुगना संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन परमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तांस्यो मोह बड़ो सोकना बोयो बीज अंक मम अंकर बीतत औद करत अगना मृत मजार पसार मुख निरखत पुंचित भुगत भूख पुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जग जानत सुपना मृत मजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख पुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत।

0: शतर न पतर न चौर न चावर, बहती जात रिथे ना बिचारो, रथ न असु न गज सिंहासन, शिन में त्यागत नांग सिदारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न कहु दृष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, करत विकार दहु कर चारो, मित्र न पुत्र कलतर साजन साख, उल्टत जात बिरह की शारो, दीन दयाल पुरख प्रपूरण, छिन छिन सिमरो अगम अपारो, श्रीपत नाथ शरण नानक जन, हे भगवंत किरपा कर तारो, हे भगवंत किरपा कर तारो।
1: प्राण मान दान मग जोहन, हित चीत दे ले ले पारी, साजन सैन मीत सुत पाई, ताहू ते लै रखी निरारे, तावन पावन पूरक मावन, एह बिद करत औतन जारी, कर्म धर्म संजम सुचने मा, चंचल संग सगल बिधारी, बस पंखे बिरख स्थावर, बहु बिद जोन परम्यो अत पारी, किन पल चसा नाम नि सिमरो, दीना नाथ प्राण पासारी, खान पान मीठस भोजन अंत की बात।

प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाचा मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूर सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत।

आकाश नामावत बिस्टा अस्त क्रिम उदर भरयो है दह दिस ताए महा बिखिया को पर तन छीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा।

हर सर्वरो खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा, बिन सजाहे हर नाम उच्चारी। इष्णान दान पापन सुच किरया, चरण कमल हीर।

0: कोट गही स्वामी समरथ नानक दा सदा बलहारी।
1: आवधि कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर

0: नीर ना साकस बोर, चले हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह, सिधे हर नाम खग। उद्यम कर लागे बहु पाती, बिचरे निक शास्त्र बहु खटुआ। भसम लगाए तीर्थ बहु भरमते, भसम लगाए तीर्थ बहु भरमते। सूखम देह बंदे बहु जटुआ, बिन हर भजन सगल दुख पावत। ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ, पूजा चक्र करत सोम पाका। अनेक भांत थाटे कर थटुआ,
1: तेह जन जाचो जगत पर जानियत। बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यो, परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगयो। बासना तै बाहर पै देखियत धाम स्यो, अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लाग्यो। बिन भगवंत

सेवियै अहनिस सहज सुभाइ, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाइ, होवै सिफत खसमदी, नूर अर सह कुर सह चटिया, तुद डिठी सच्ची पाते सा, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दैसाहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दा वेसाहु, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दैसाहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सोरठ महला पहला।